ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद बुहेरा अहमर के एक बरामदी मरकज पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी गई है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता जुमेरात को ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचने के बाद बंदरगाह यांबू तक खाम तेल ले जाने वाली पाइपलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। इस पाइपलाइन को अपना हुर्मुज के मुतबादल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। रॉयटर्स ने मंगल के रोज जहाजरानी की सनद के जराए का हवाला देते हुए खबर दी कि सऊदी अरब ने यांबू पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी है। पड़ोसी मुल्क यमन में हौसी बागी सऊदी हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत के खिलाफ अपनी जारहियत बढ़ा रहे हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने अपना कंट्रोल बुहेरा अहमर में बहरी जहाजरानी की अहम बंदरगाह आबनाए बाबुल मंदब के आसपास के इलाकों तक फैला दिया है। हौसियों ने बुध के रोज एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने एक सऊदी F-15 जंगी तैयारा मार गिराया और यांबू में तेल की एक तनसीब को बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर हथियारों से नुकसान पहुंचाया है। नेशनल पुलिस एजेंसी के माहरीन के एक पैनल ने जापान के सिक्योरिटी के शोबे में काम करने के लिए मखसूस महारतों और दीगर अहलियतों के हामिल गैर मुल्की कारकुनों को शामिल करने के इम्कान पर बहस शुरू कर दी है। ये शोबा कारकुनों की शदीद किल्लत का शिकार है। सिक्योरिटी सर्विसेज का कानून फिलहाल मुस्तकिल रिहाइश के हामिल गैर मुल्की रिहायशियों, जापानी शहरियों के शुरकाए हयात और दीगर कुछ अफराद को इस सनत में काम करने की इजाजत देता है। माहरीन का यह पैनल, जिसमें एक सिक्योरिटी सर्विस एसोसिएशन के एक सीनियर ओहदेदार, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एक वकील शामिल हैं, बुध के रोज टोक्यो में अपने इफ्तिताही इजलास के लिए जमा हुआ। खास तौर पर इस बात पर बहस की कि आया गैर मुल्की शहरियों को मखसूस हुनरमंद कारकुन प्रोग्राम और महारत के फरोग के लिए रोजगार प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी के शोबे में काम करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। नेशनल पुलिस एजेंसी के कम्युनिटी सेफ्टी ब्यूरो के सरबराह यामादा योशिताका ने कहा कि चूंकि सिक्योरिटी की सनत गैर मुल्की कारकुनों से पूरी तरह फायदा उठाने से कासिर है, इसलिए वो चाहते हैं कि पैनल के अरकान मुख्तलिफ जावियों से ऐसे लोगों को कबूल करने पर सरगर्म बहस करें। नेशनल पुलिस एजेंसी ने इशारा किया है कि मजदूरों की किल्लत के साथ साथ सिक्योरिटी की सनत को अफरादी कुव्वत की उम्र रसीदगी का भी सामना है, जहां इसके तकरीबन निसफ कारकुनों की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है। पैनल इस बात पर बहस करेगा कि गैर मुल्की कारकुनों को किन सिक्योरिटी खिदमात में काम करने की इजाजत दी जाएगी और वो एक ऐसा निजाम वजा करेगा जो गैर मुल्की कारकुनों को मुतल्लिका तजर्बा और महारत हासिल करने में मदद फराहम करे। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की वजीर आजम ताकायची सनाए ने अपनी काबीना में रद्दोबदल करते हुए बास मरकजी वुजरा को ओहदों पर बरकरार रखा है। चीफ काबीना सेक्रेटरी किहारा मिनोरू ने जुमेरात की सपहर नई काबीना के ओहदेदारों का ऐलान किया। और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरान और अमरीका पर मंतकी और तहमुल मिजाज रहने पर जोर देते हुए दोनों फरीकों से बातचीत का अमल शुरू करने की अपील की है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।